नहीं डांसर मिलते या गंदे सब नशे फीमेल रैप सूखे तो दुख रहे कंधे बचने को चालू है धंधे जाती हूँ चर्च को मैं संडे सड़कों पे बजती है रात मंदिर में बजते घंटे करते गानों पे कैप बंदे हार्ड में को लगता है ट्रैक जल रहे मर्दों के पुतले रंडी लोग कमाते बंदों पे मुंह के 21वीं सदी औरतें भी झूठे 21वीं सदी भाई औरतें भी झूठे 17 में घुसते फिर हिजड़ों से लूटे रहते जुम्बिश में कमरे में सूटकेस बोले फिर भौंक में दो कुत्ते हर मौके पे चुपते भाई देश में है भूख आमिर लोग हकते वो देश में है न्यूज़